0: सो आई टेल माई पिलो कि मुझे सुबह 8 बजे उठा देना.
1: करेक्ट.
0: सुबह उठा देना. एंड I don't know science क्या इसके पीछे.
1: मैं बताती हूँ.
0: आप बता रहे हैं. I don't, but it works.
1: Yes.
0: उठा ही देता है मुझे. समझ नहीं आता मुझे कैसे होता है, but it works.